तब यो सच ता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करे निवास। सच ता पर जानिया जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच ता पर जानिया जा आत्म तीर्थ करे निवास। सत

कर श्रृंगार ऊंचा कूका है वह दागा वह जोधा गा विचार मूर्ख पंडित रिक मत होंजित संजय करे प्यार तरमी तरम करे गवार मंगे मुख द्वार जती सदावे जती सदावे जुगत न जाने छाड बह कर बार सब को पूरा आपे होवे काट न कोई आखे पत बरवाणा पछै पाई।

जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्राह्मण है, खत्रि शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने फिर नानक ताका दास।

सच में आछ है साच रहे सबको ससमावर करे प्रपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लैया प्राशत जाए नानक तुम खंतर पाए जुज मैं जोर

आवे साध कूड़ी रास कूड़ावा पार कूड़ बोल करे आर शर्म तरम का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ तो तीका खाई हाथ सूरी जगत का साई नील वस्त्र पैर हो प्रवाण मलेस्तान ले पूजा पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका कड़ी कार ऊपरे आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा पिटे तन पिटे फेड़ करेन मन जूठा चुली प्रेन को नानक नेचो त्यावे वेन सत गुरवा।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अयुनी सैभंगुर प्रसाद

ही अमृत शॉड बिखे बिख कही माया मोह परम पै भूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेवी है

सत गुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। भगत कर है मर जीवड़े गुरमुख भगत सदा होए।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर हो बहरा गुरु, मैं जे ही कान चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हौ सार ना जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना, कर मेहर अमृत साई। कृपा की जैसा मत दी जय, आठ पहर तुद तिहाई। तुद आगे अरदास हमारी,

चीजों नू फड़िया जाए ये तो गवर्नमेंटा की ड्यूटी पर जे गवर्नमेंटा नहीं ना कर दिया एक होर गवर्नमेंट भी हैगी है जिहड़ी गवर्नमेंट किसी नू माफ नहीं करती वह कि है सतगुरु जी कहिंदे अणहोण दा आप गुणाए दे जम मार करे तिन खुआर अणहोण दा दस के वह भगत है नहीं पर भगत बन जाते ने संत है नहीं पर संत बन जाते ने आसा दी वार च एक बचन पढ़ते एक मूल न बूझण अपना अणहोण दा आप गुणाए दे कईआं नू अपने आप की सोझ ही नहीं कि असी कौन कि वह बिना ही कारण तो अपने आप नू दसी जाते हैं बहुत कुछ वो अपने आप नू भगत अपने आप नू संत अपने आप नू बड़े विद्वान दसी चले जाते हैं। गुरु साहब जी कहिंदे इहो जे जिहड़े बंदे हन अणहोण दा भाव हैगे बगले ने पर हंसां दी रीस करदे ने हैगे वह ठग ने अंदर चोर ने पर बाहरों वह संत भगत बनना चाहते ने अणहोण दा आप गुणाए दे जां मार करे खुआर एह जे लोगों नू जम जेड़ा ना अखीर वेले खुआर बड़ा करदा है दुखी बड़े हुंदे ने भाव ओ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਦੇ ਹਨ।

हे वाहिगुरु जीओ, गुरु दी मत दे राही सानू ए पता लग गया, गुरु के ज्ञान राही सानू ए समझ पई है कि जिन्हों परमात्मा अपने नाल मिलाए ओ ही मिल सकदा है। असी तां परमात्मा दी मेहर प्राप्त करन लई यतन करने, असी कोई भी कम करना हुंदा यतन करदे ना आपां। देखो ना, तुसी कोई डिग्री लैनी किन्नी मेहनत करदे, आपां मेहनत कीते डिग्री मिलेगी ना। तुसी कोई वणज व्यापार करना है, कोई बिजनेस करना है, उहदे लई मेहनत करदे तां ही कामयाब हुंदे ना। मेहनत तां करनी पैगी, मेहनत साडी होनी है, रहमत परमात्मा ने करनी है। मेहनत तो बिना जिंदगी च अगे नहीं वधिया जा सकता। सानू साडे सतगुरु जी ने कहे उद्यम करो, मेहनत करो। मेहनत करांगे, हंकार नहीं करना, उहदी रहमत नूं प्राप्त करन लई अरदास जरूर करनी है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे जिस तू मिलने प्यारे आ, से तुद में सो तुद मिलै गुरमुख विचारे। गुरु दी मात्रा ही सानू ए पता लगे है कि जिन्हां नूं तुसी अपने नाल मिलदे ओ मिलदे ने, भाव जिन्हां ते बख्शिश करदे हो। जिस भावे तिस आपन नाए लावै, जिस भावे तिस खेल खिलावै, जिन्हों चाहुंदा है अपने नाम नाल गुरु राही जोड़ लैंदा है। इस करके सानू ए समझ पई गुरु दे राही कि जिन्हों तुसी मिलाउंदे ओ तुहाडे नाल मिल जांदा है।

ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज छेती मन जिया वधाइया।

सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रो अरनाले अरनाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो अरनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिव सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग्या घर सुभाग्या शब्द वाजे कलाजित कर तारिया पंच दूत दवास किते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिंद को से ना मर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तेत कारे अनद वाजे अनद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहा पर पूरे मिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात दिवसरा दुविधाई दाया हेलै सगल जगत चंगे आईया।

जी आप जी ने अमृत बले तो खुले दर्शन दारे बख्शे आप जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब विखे अमृत वेले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दीवार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी लड़ी वार कथा विचार छे पौड़िया आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दिया सेवा संभाल करदिया हजूरी अंदर विचरदिया अनेक प्रकार दिया भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी गां तो समत बख्शनी दर आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावा दर मंजूर करनिया यात्रावा सफल करनिया जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहे गुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमयी बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन जिउण दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला।

तो दठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह सिर शाह दैशाह जिस पास बैठे आ सो ही है।

जन्म मरण के मिटे बिसुरे प्रम पे तरे छुटे पे जम के कट कट एक रहया पर पूरे

अत तर्त महत दिवस रात दोदाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे तर महदूर करमिया पो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नेहा हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन नेहा हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पाई हमरी क्रोहा दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काबो हो आभा दे मुहे बचाब हो। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सवेरन को आई संगरिये। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवरना दे आऊं जो बर चहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है। आभाद मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा। राख लियो महे राखण हारे साहेब सन सहाय बियारे। दीनवन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सौ लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो। आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन्हा सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो। कटकट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी दे कुंचर अस फूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पड़ पड़ की जन्ने। जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आ कर्ख कर तो हूं कब हूं तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम जानत वेद भेद अरालम। रंकार निर्विकार नरलंब आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड़े उचारत पिता जा को पीव ना पावत बेता। ताको कृपाहणे अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महा

0: देव को कह सदाशिव ड्रंकार का चीनत नैव आप आपनी बुधै जेती वर्णद भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुपस रूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंडज रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कौ फूल राजा हवै बैठा कौ सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दखाए अचंभव हा जुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उतबाता सकल मलेच करो रणगाता जे आस्तु जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बात है ताकि काल निकट न है रच्छा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टने तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो ताकि ताप तनक मय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते तहें उबारा जिन नर नाम त्यारो कहा दारे दुष्ट दोखते रहा खड़ग के मैं शरण तिहारी आपो हाथ दे ले हो ओबारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आपो हाथ दे ले हो ओबारी सर्व ठोर मो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपीत कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल दोहार कौ छाड़ के गए हो तोहार द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शबदो तंगावो हरी केरा माने जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया इमन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन्ने मेरे दूख सब में सारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार्य सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस दे है सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिसनी आए हे वडियाइया कहे नानक सुनहो संतो शबद धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित कर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दुर्कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तैसक होआ तित घर अन्ना हद बाजे आनंद सुनहो वडवागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी हंत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्ना हद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्ना हद तूरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस भयोई तरस भया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तीवा तन मन थी वे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
1: तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊचे ते सगल समगरी तुम रे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास

दोहरा आ गया पैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को

सत्संग जीव कीर्तन करदे आ, बाणी पढ़दे आ, बेंत बेंत भुलां गलतियां हो गईयां ने दस दस रे जानकर खिमा कर देनी। आप सारिया ही संगतां दा, समूह प्रबंधक साहिबान दा तहे दिल तो शुक्र गुजार हां जिन्हें कीर्तन सेवा बख्श कर कृतार्थ किया। सब तो उपर अबा बौल साहिब सतगुरु दीन दुनी दे मालक शब्दा अवतार सतगुरु बाणी के बोहित कलजुग के उधार करता दसा ही पातशाह दी आत्मक ज्योत स्वरूप सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कुटान कोट धनवाद लख लख शुकराना है जी। आग्या बख्शो जी, फतेह जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गोद दे विच बैठ के राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। गुरु साहब जी ने अपनी गोद बख्शिश कीती है, क्योंकि ओही जिंदगी दा समा सफला है जेड़ा गुरु दी याद दे विच ते गुरु दी गोद विच बतीत कीता जावे। क्योंकि गुरु साहब दी पावन बाणी दे बचन ने साई घड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम, ओ घड़ी भागां वाली है, ओ सुआस सफले हो जांदे ने जदों असी सतगुरु साहब जी दी पावन बाणी पढ़दे हां सुणदे हां। ते इस समय नूं सतगुरु जी ने पावन बाणी दे विच फरमान कीता है, सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। शुकराना करिया करिए जदों गुरु दी गोद दे विच बैठ के पावन बाणी पढ़दे हां जां घरां दे विच बैठ के पावन बाणी पढ़दे हां ना, अरदास जरूर करिया करो, सच्चे पातशाह आप जी ने तरस पीता ते कुछ समा साडे कलयुगी जीवां दा आप जी दी याद दे विच बतीत होया, क्योंकि उही समा लेखे दे विच लगना है। चाहे 100 साल दी उम्र बिता करके चले जाइए, बाकी तां साडे दुनियावी धंदे ने, जिन्नी असी पावन बाणी पढ़ी होवेगी सुनी होवेगी उही समा सफला है। बाकी तां रहन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। मेरी बेनती है ये पावन शब्द आप सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो सरवण करते रहिंदे हो, कोई भी रसना जिहड़ी है ना वांझी ना रहे, उच्ची आवाज दे विच भावना दे नाल गुरु साहब महाराज जी दे चरणा च करो अरदास सारे।

सेवक सिख पूजन सब आवह सब गावे हर हर उत्तम बाणी गावया सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। सतगुरु जी कृपा करन आई हुई सत्संग दी हाजरी दर प्रवान करन समूह प्रबंधकां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के इन्हां दे कोलों इदां ही सेवावां सतगुरु जी लैंदे रहन। आओ आनंद साहिब जी दा

जी अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा वांदर प्रवान करनिया यात्रावां सफल करनिया गुरमत अनुसार मनोकामनावां पूरियां करनिया कलंगी धर सचे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आप जिया ने कृपा करनी।

ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वडाए जन नानक नाम आधार टेक है और नामे सुख मंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन सुहेला आओ दकटै दिन सुरै नारे मन गुर मिलका सवारे रहाओ ए संसार विकार सुनसे मैं तरे ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पी आवे रस अकाथकता तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो अर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बोर

रहो पूर रहो सर्व मैं आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे

सत सते सत पणिए दूसर आन न अवर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब

रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी वालता दे रहबर, राजान राज पानान पान देवान देव, उपमा महान ऐसे दीन दयाल सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जियां दे अमृत वेले दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दियां हाजरियां लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म सोर ठराग दे अंदर पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जियां दा शब्द है। जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे अंदर 641 अते 642 अंग दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं किहड़े नजरे कर्म करना करदे ने, आओ प्रेम सतिकार वैराग दे विच भिज के सरवण करना करिए जी। सूरठ महला पंजवा, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाठ पढ़ियो अरवेद विचारियो, निवल पुंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बद बाधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।